साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पहे सबरे अमृत नाम साज संग लैन सुप्रसन्न पहे गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकार तेरे राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रतारी नानक निभे खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसाए सो होत निदान।

प्राप्त होए। खेम संत शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप योग प्रत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगाश सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर्थ

कार्य स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संत हो राम नाम निस्तरिए उठत बैठत हर हर त्याई अनदिन

संत उबार गुनी मन गौरे पास पशु नगनाग नरातप सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल में थल में पल में कल कर नहीं कर्म विचार है।

कथना कथिना वै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहि जुगा जुगंतर काहि काहि हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे प्रवाह साचा साहिब साच नाए भाख्या भाव अपार वाखै मंगह देह दे दात करे दातार फिर कै गै रखिया जित दिसै दरबार मुहाउ के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यारे मृत वेला सच नाउ बड़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थाप्या न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हव जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई तीर्थ नावा जे तस भावा बिन भाणे के नाए करी जे तीसर ठू पाई वेखा बिन करमा के मिलै लई मत विजर तंजवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई जे चारे अर जा वरद सुनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोई चंगा ना रुखाए कै जस कीर्त जग ले जे तिस नदर ना आया वही तां वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दी दोषी दोस्त रे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई ना सुझई जे तिस गुण कोई करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत धवलो आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनै पोह न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया ईश्वर ब्रह्मैन सुनया मुक्सला हनुमन सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमृत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सत संतोख ज्ञान सुनया अठ सठका इसनान सुनया पड़ पड़ पावह मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास

जत पावहरा तीर्ज सुनियार वहरण मत वेद हथियार पहो खलाव अगन तपताव पांडा पाओ अमृत तित टाल कड़िया शब्द स

है, अभीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, अवसर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अवर्ण है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूत है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबह है, अगह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग पर्यात छन नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गवणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमात्थे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमात्थे समस्ति बेपूते कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश परम रूपे नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अभोगी अभोक्ते नमो जोग जोगेश्वर परम जोगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मी नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मी नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह नमो भू भूपे नमो दान दान्य नमो मान मान्य नमो रोग रोगे नमो अस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता अदूर्ध अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अभेदी अनाम अकाम समस्त पराजी समस्त अस्ताम तिराजू चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं आजू हैं आदेश हैं अपेस हैं पुजंग पर्यात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समासी निदाने नमस्त्वं नरेनाथे नमस्वंग परमाथे नमस्वंग अगंजे नमस्वंग अपंजे नमस्वंग अकाले नमस्वंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्पेशे नमो राज राजे नमो सासाजे नमो सासाजे नमो मामाये नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो प्रमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्वजंत्र नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृष्ण नमो सर्वरंगी त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीज अखिद्य अभिज्य समस्तं प्रसिद्धे कृपालं स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट शांत्वै प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे चल भोगे चल राजे अटल साजे अखल धर्म लख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भोक्ता सर्वं योक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआले।

सत है धरणी त्रित है अमतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता अमृत है आजवा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है खलकायक है विश्वंपर है करुणालय है निपनायक है सर्व पायक है पापंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जपजापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात शन नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो ते तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सुताम संसात रूपे नमो परम तत्त्वं अतत्त्वं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो शांत रूपे

वाक्य है। अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अच्छरी छंद अजयाल अभयु अपूवज अनास अकाश अनास अकाश अगंज अपंज अलक अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग पर्यात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग बेपूते

हरियं करियं क्रीमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुक्ते स्वयं पवस्पं सर्वदा सर्वजुगते

जाचक अनेक सो एक देवैया। दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप तपेंगे। पुन्न प्रताप

दानव देव फनिंदन साचर वाहिगुरु मानव इंद्र गजेंद्र नरात पंजों त्रिलोक को राज करेंगे कोट इशनान गजादिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत

हो जो याकी एक बार चौपाई को कहे चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय अर सहस पण तीन के जय भादर सुदी अष्टमी रविवार तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

तो सब लागू हर सिंह राव चित लाए कह नार गुर प्रसादी सहज उपजाए हे सह साहिब जाए जियो मैले बारू निर्मल जियो त मैली तिनी जन्म जुए हारिया।

आप षड सदा रहे परणे, गुर बिनियवर न जाने कोए। कहे नानक सुनो संत हो, सो सिख सन्मुख होए।

फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो हो बिन सतगुरु।

0: सुख सहजे वसना। जय प्रसाद पूरन फले,
1: जय प्रसाद परम गत पावे,
0: जय प्रसाद सो सहज समावे।
1: ऐसा प्रभु त्याग अवर गत

0: सरस्वती,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
0: जैसे जल में कमलालेप,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सोख,
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट सम्मान
0: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान,
1: ब्रह्म ज्ञानी के

0: ज्ञानी के मन होए परगास।
1: जैसे तारे ऊपर आकाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान।
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान।
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा,
1: मन अपने है सब ते नीचा।
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पय,
1: नानक जिन प्रभ आप करे।
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना,
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना।
0: ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर मया,
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
1: ब्रह्म ज्ञानी की चेष्टा अमृत वर्षी।
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।
0: ब्रह्म ज्ञानी का पोजन ज्ञान,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
0: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा,
1: ब्रह्म

0: फल भला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे संग संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी आगत
1: ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता
1: ब्रह्म ज्ञानी कै होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ्याप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड पागी पाई
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अध्याखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सजीवे नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पर्ख बदाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का

0: भक्त कीर्तन संग राजे सब उपर होवत कर पाल
1: नाम जपावे
0: नानक हो वैष्णव परम गत पावे
1: भगवंत भगत।

0: ज्योतिष पावे सोई करावे।
1: इसके हाथ होए ता सब कुछ ले,
0: ज्योतिष पावे सोई करे।
1: जानत भिख्या सब रचे,
0: जानता अपना बचे।
1: पर में पूला दे दिस्तावे,
0: नेमक में चार गुण फिर आवे।
1: हर कृपा जिस अपनी भक्त दे।

0: पति
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नरक पति होवत स्वान
1: जो जाने में जो वनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत्र
1: उसको कर्मंत कहावे
0: जन्म मरे वो जोर परमावे
1: का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधान
1: कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नानक किया मुक्ता के सुख पावे
1: धनवंता होए कर गर्भावे
0: ऋण समान का संग न जावे
1: लश्कर मानक ऊपर करे आस
0: फल पीतरता का होए विनाश
1: आप जाने बलवंत
0: खेल में होए जाए पसमंत
1: बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: और प्रसाद जाका मिटिया अभिमान
0: सो जन नानक दर के परवान
1: कर्म करे हो तारे
0: श्रम पावे सगले बरतारे
1: तपस्या करे अहंकार

0: सजाए।
1: कृपाते बंधन टूटे
0: गुर प्रसाद नानक हो छूटे।
1: सहस कटे लक उठतावे
0: तृप्त नावे माया पाछे पावे।
1: भोग भिख्या के करे
0: मैं तृप्तावे कब कब मरे।
1: बिना संतोष नहीं कौ राजे
0: स्वप्न मनोरथ मिलते सब काजे।
1: राम रंग सर्व सुख होए
0: बड़ भागी किसे।

0: जाए।
1: दुखी सदा सहकाइए,
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए,
1: दुखी की पूजे ना आसा,
0: संत का दुखी उठ चले निराशा,
1: दुख न त्रिष्ठा कोई,
0: जैसा पावे तैसा कोई होए,
1: कीर्तना मेटे कोए,
0: नानक जाने सच्चा सोए,
1: सब कर तिसके ओ करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार।

0: सदा हर जाप
1: अवनाशी प्रगापे आप
0: आपन किया कछु न होए
1: ये सो प्राणी लोचे कोए
0: इस बिन नाही तेरे किछ काम
1: गत नानक जापे एक हर नाम
0: रूपवंत होए नाही मोए

0: कर जाहे।
1: जिस वक्र को लैण तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया।
1: राज अभिमान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तोल।
1: राध खेप संत संग चाल
0: त्याग बिखिया जंजाल।
1: धन धन कहे सब कोए
0: जल हर दर के सोए।
1: हो बपार विरला बपारे
0: नानक ताके सद बलिहारे।
1: चरण साध के तोए तोए पियो
0: हर प्रसाद को अपना जियो।
1: साध की तूर करो स्नान
0: साध ऊपर जाइए करवान।
1: साध सेवा बड़ पागी पाइए
0: साध संग हर कीर्तन गाइए।
1: अनक विगंते साधु राखे
0: हर गुण गाए अमृत रस चाखे।
1: ओट गही संत है दर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया।
1: मृतक को जी बालन हार
0: भूखे को देवता धार।
1: सर्व निदान जा की दृष्टि माहे
0: रहना पाए।
1: सब किछ तिसको करने जोग
0: दूसर हुआ न होग।
1: जप जन सदा सदा दिन रहनी
0: सब ते ऊंच निर्मले करनी।
1: हर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सो जा निर्मल दिया।
1: जाके मन गुर की प्रतीत
0: तेजन आवे हर प्रभ जीत।
1: भगत भगत सुनिए ते हो लोए
0: जाके हृदय को होए।
1: सच करनी सच

मूल सत सत उत्पत्त जिसे बजाए तिसे सफली विश्वास सत नानक गुरते पाई सत जन जाके हृदय प्रवेश नाम जप ताकी गत होए

0: सतगुर सिक्की करे प्रीत पाल,
1: सेवको कर सदा दयाल।
0: सिक्की गुरु दुर्मत मल हिरे,
1: गुर वचनी हर नाम उच्चरे।
0: सतगुर सिक्के बंधन काटे,
1: गुरका सिख विकारते हाटे।
0: सतगुर सिक्को नाम तन दे,
1: गुरका सिख बड़ पागी हे।
0: सतगुर सिक्के

0: संत जिन जनामिल करो विचार,
1: एक सिमर नाम अधार,
0: कृपा समीत विसार हो,
1: चरण कमल रित में अवतारो,
0: करण कारण सो परम सम्राट,
1: दृढ़ कर गाहो नाम हर बात,
0: संचो हो वो भगवंत,
1: संत जना का निर्मल मंत्र,
0: एक आस राखो मन

0: शोकम विसरजे जीवन जिया
1: बसरेजे अगन में राखे
0: गुर प्रसाद को बिरला लाखे
1: शोकम बसरेजे बेकते काढ़े
0: जन्म जन्म का टूटा गांडे
1: पूरे तते ही बुझाया
0: प्रभ अपना नानक जन त्याया
1: संत करो एहो काम
0: आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सुख पावो
0: आप जपो अवरा नाम जपावो

0: सब अकार हो कशना दृष्टिता
1: पाप होता कहते होता
0: हरी अपन सन समाद
1: तब बैर क्रोध के संग कमाद
0: का वर्ण देहना जापत
1: तब हर सो को किसे व्यापत
0: अपन आप आप पर ब्रह्म
1: तब मोहाच सोवत परम
0: केल आप कर भतीजा
1: नानक करने हार न दूजा
0: उपत प्रभु केवल धनी
1: तब बंद मुक्त को किसको घनी
0: एक हर अगम अपार
1: तब नरक स्वर्ग को कौन अतार
0: गुण प्रभु सह सुभाए
1: तब शिव सक्त कहो के तठाए
0: आपे आप अपनी ज्योत तरह
1: तब कवन निकल कवन का कदर है
0: चलत आप करने हार
1: गान पिठा करे अगम अपार
0: सुख अपन आसन
1: तै जन्म मरण को का विनाशन
0: करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास कहो किस होए
0: अवगत अगोचर प्रभ का
1: तब चित्र गुप्त किंच पूछ करेगा
0: नाथ निरंजन अगोचर अगादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन वादे
0: अपन आप आप ही जर्जा
1: नानक अपन रूप आप ही अपर्जा
0: निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: तै बिन मैल कहो क्या तोता
0: है निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तै कौन को मान कौन अभिमान
0: केवल जगदीश
1: तै चल श्रृंखला को कीस
0: ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: तै किसे भूख कवन तृप्तावे
0: रावण करने हार
1: नानक करते का नाही समार
0: शोभा अपन संग बनाई
1: तब कवन माए वाम मित्र सत पाई
0: सर्व कला आपे परवीन
1: तै वेद कतेव कहा को चीन
0: अपन आप आप और तार
1: तब सगन अब सगन कहा विचारे
0: अपन ऊंच अपन आप नेरा
1: तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा
0: विश्व रहे बेसमाद
1: नानक अपनी गत जानो आप
0: शल अछेद अपेद समाया
1: उहा किसे व्यापत माया
0: आपे आदेश
1: तै गुण का नाही परवेश
0: कै एक एक भगवंता
1: तै कौन चिंत किस लागे चिंता
0: अपन आप आप पर ध्यारा
1: तै कौन कते कौन सुनने हारा नानक आप उसको आपे पहुंचा
0: आप रचो पर पंच अकार
1: तै गुण में तीनो विस्तार
0: तै पई कहावत
1: को नर को स्वर्ग बचावत
0: जाल माया जंजाल
1: हमे मोह परम पै पार
0: मान अपमान
1: अनेक प्रकार की ओब ख्यान
0: खेल आप कर दिख
1: खेल संकोचे तो नानक के
0: अब भगत तह आप
1: जय पसरे प्रसाद संत करताप
0: का बहतनी
1: उनकी शोभा उन्हो बनी
0: कौतक करे आनंद चोज
1: आपे रस भोजन मेल जोग

0: हमारी।
1: प्रभु की उस्तत करो संत बीत
0: सावधानी का कर चीत
1: सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सो होत निधान
1: सर्व इच्छा ताके पूरन होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए स्थान
0: बहर न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निद
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ
0: ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रगास